हेलो डार्लिंग, डार्लिंग क्या बात है, तुम अब तक नहीं आए। कम सून, देखो देखो देखो कितना अच्छा मौसम है, जल्दी आओ ना प्लीज। शुकु शुकु प्लीज माय लव माय डार्लिंग माय पेट, ओह शुकु प्लीज कम सून।